क्या टेक्नोलॉजी वाकई आपकी जिंदगी को सहल बनाती है या एक गैर मरई कुवत बनकर आपको इसका एहसास दिलाए बगैर आपको रुख देती है? आप दिन में कितनी बार सिर्फ एक मिनट कहकर अपने मोबाइल का सहारा लेते हैं? क्या टेक्नोलॉजी आपके जीरो कंट्रोल है या टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करती है? आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सबके लिए बाइस तशवीश है। सिराज में तकरीबन हर किसी की जेब में डिजिटल कायनात मौजूद है ना, जो कि हमारी जिंदगी की डगर को नुमाया तौर पर बदल रही है। जागते अपने फोन को चेक करना, वक्फे के दौरान सोशल मीडिया ब्राउज करना, ये बाज औकात महज तफरीह के बजाय गर्दाब बन जाता है। यूरोपियन पर मही 2023 के एक मुताले से इस बात का तयन हुआ है कि जिन लोगों डिजिटल मिनिमलिज्म का तरीका अपनाए उनके स्क्रीन टाइम में औसतन 20% कमी आई। इसके नतीजे में दिमागी सेहत, नौकरी, निजी जिंदगी के तनावे में नुमाया बेहतरी आई। तो डिजिटल मिनिमलिज्म सही मानों में क्या मफहूम रखता है और ये क्या हकीकत में मुमकिन है? टीआरटी खबर ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इरम आक्यूस चायलाक से इन सवाल पर तबादला ख्याल किया। चायलाक ने बच्चों बड़े दोनों के लिए एक अहम सतह का इंतबाह दिया, इसे मुकम्मल तौर पर तर्क किए बगैर टेक्नोलॉजी के मुतवाज़ इस्तेमाल के तरीकाकार को ज़ेर लाया है। आइए अब इस दिलचस्प गुफ्तगू पर काम करते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म यानी मुख्तसर तरीन इस्तेमाल क्या चीज़ है, ये क्यों कर अहम है? डिजिटल मिनिमलिज्म हमारी जिंदगी के मरकज में टेक्नोलॉजी के बजाय हमारी अपनी इकदार को रखने पर जोर देता है। चायलाक ने इस नुक्ता नजर की वजाहत कुछ यूं की है। डिजिटल मिनिमलिज्म एक ऐसा फलसफा है जो अफराद को डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते वक्त अपने शुरू को बरकरार रखने और सिलेक्टिव यानी तरजीहत पसंद बनने को तरकीब देता है। तजवीज़ करता है कि अफराद डिजिटल टूल्स सरगर्मियों पर जिनमें मशगूल होते हैं अपनी तरजीहात पर अपनी ख्वाहिश के दौरान पर तवज्जो मरकूज करते हैं जिनसे अच्छा महसूस करें ये मालूमात के हसूल में मामूल हो। मुख्तसर स्क्रीनों को अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर खारिज करने के बजाय किसी चीज पर क्यों कर कितनी मुद्दत के लिए तवज्जो देना अहमियत का हामिल है। बेतहाशा नोटिफिकेशन और फोमो यानी हालात की आगाही से महरूम रहना। हमारे फोन्स का मुसलसल बचना, कोई भी नोटिफिकेशन आने पर इसे फौरन चेक करने की दिली ख्वाहिश, यहाँ तक कि अगर हम नोटिफिकेशन ऑफ भी कर देते हैं तो हमें अक्सर ये एहसास होता है क्या कि मैं कुछ खो रहा हूँ। चायला के मुताबिक सूरतेहाल में गैर इरादी तौर पर भी हमारी तवज्जो स्क्रीन की तरफ मरकूज कर देती है। मुसलसल ऑन नहीं रहने का दबाव, पेशरफ की आगाही से दूर रहने का खौफ डिजिटल आले की बार बार चेकिंग का बायस बनता है। कुछ मुतालिया से इस बात का तयन हुआ है कि जिन लोगों में हालात हाजरा से आगाही हासिल न करने का खौफ बहुत ज्यादा होता है वो नोटिफिकेशंस बंद हों तो भी अपने फोन को इतनी ही बार या इससे भी ज्यादा बार चेक करने की तरफ मायल हो सकते हैं। इन अफराद के जो ऑनलाइन होने के दबाव फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का बहुत ज्यादा खौफ महसूस करते हैं के लिए खुद ज़ाब्ता खुद पर काबू पाने की सलाहियत तैयार करना, ज़ाती वसाइल तक रसाई करना या पेशेवराना मदद हासिल करना रोजमर्रा की जिंदगी में इनके काम काज को अक्सर मुतासर करता है तो मुअसर साबित हो सकता है। परेशानी की सतह और स्क्रीन का वक्त, लंबी स्क्रीन वाली मैराथन जिस्मानी और जहनी दोनों तरह से थका देती है। चायलाक का कहना है ताल्लुक वाज़ह तौर पर देखा जाता है, खास तौर पर बच्चों नौ उम्रों में वालदेन को स्क्रीन के वक्त के करीब से निगरानी करनी चाहिए। मुतालिन ऑनलाइन गेमिंग, टीवी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल बेचैनी के दरमियान ताल्लुक जाहिर किया है। मजीद फराम बच्चों में स्क्रीन टाइम डिप्रेशन का जायजा लेने वाले तकरीबन तमाम मुतालियात में अहम इर्तबात पाया गया है जो बच्चों में स्क्रीन टाइम डिप्रेशन के दरमियान ताल्लुक में आला सतह यकीनी का मुजाहरा करते हैं। इन वजूहात की बिना पर वालदेन को तजवीज़ किया जाता है कि अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम और डिप्रेशन की मुमकिन अलामात की निगरानी करें। डिजिटल डियोटेक्स क्या मुख्तसर वक्फे देर पा हल है? हाल ही बरसों में डिजिटल डियोटेक्स एक मकबूल रुझान बन गया है और इसमें मेडिकल तर्ज के तरीकाकार शामिल है, जैसे फोन को कई दिनों तक इस्तेमाल न करना। चायलाक के मुताबिक अर्चे एक आर्जी वक्फा है, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी के दीगर शोबे में एडजस्टमेंट नहीं करते तो ये मुमकिन तौर पर देर पा हल नहीं होगा। इन डिटॉक्स तराइक पर अमल दरामद